आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में सुबह के 7 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 7 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

0: क्या है चित चोर?
1: 1 2 3 4
0: क्या है चित चोर?
1: यू सिंग लाइक किशोर बट शादी का डे
0: ओ यस सितंबर 8
1: वेरी लेट
0: डार्लिंग वेट

0: अच्छा बिल्कुल
1: तू है बुलबुल
0: सच है बिल्कुल यू आर वंडरफुल
1: लग जा गले दुनिया जले छम छम छम छम छ छम छ छम ए गर्ल हम तुम पे दिल निसार करता है रोज रोज रोज ही तुमको प्यार करता है रोज

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 8 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 8 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 9 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 9 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

इस दिन बीवी बन गई भोली, कुंडी खोली हंस के बोली, जाने तमन्ना अंदर आओ, पहले तो कुछ खाओ आओ, फिर बिस्तर पे होंगी बातें, बड़े प्यार से कटेंगी रातें। शौहर चौंका, भूले से मैं, ये किसके घर आ गया यार, मेरी बीवी मुझे कभी भी दे नहीं सकती इतना प्यार।

माफ कीजिए, मेरे साथ जरा इंसाफ कीजिए, मुझको अपने घर जाना है वरना बीवी फिर मारेगी। उस दिन बीवी होश में आई, बंद हो गई सारी लड़ाई, नफरत हारी उल्फत जीती, लुटी खुशी फिर लौट के आई। अरे नफरत हारी उल्फत जीती लुटी खुशी फिर लौट के आई। आई रे आई रे आई रे आई रे आई पीना छूट।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 10 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 10 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 11 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 11 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

0: बता दूं? वो यहीं पर।
1: यहीं है?
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 12 noon in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

शख्सियत लैला मजनू शिरी और फरहा, इनका सच्चा इश्क जमाने को अब तक है यार। याद शायद मुझे आया है एक ऐसे दिलबर का नाम, जिसने धोखा देकर नाम इश्क किया बदनाम। यही है साहिबान कहानी प्यार की, किसी ने जान ली

0: तुम लोग हंस क्यों रहे हो?
1: हंस नहीं रहे दोस्त, रो रहे हैं तुम्हारी अकल पे और हम सबकी बेखूफी पर। एक दीवाने ने ख्वाब देखा जंगल में और उसकी तस्दीक के लिए हम सब दीवाने तुम्हारे दरबार में पहुंच गए।
0: ये दीवानगी नहीं, हकीकत है। मैंने अपनी आंखों से उन दो इंसानों को सांप बनते हुए देखा है। विजय, पहले तो तुम्हारी सिर्फ दिमाग पे शक था, अब मालूम होता है कि तुम्हारी आंखें भी जा रही हैं।
2: हम ये कैसे मान सकते हैं यार कि एक सांप जब चाहे इंसान का रूप धारण कर ले और जब जी में आए फिर से सांप बन जाए।
3: मैं तो कहता हूँ ये तुम्हारे दिमाग का फतूर है और कुछ नहीं।
1: मुझे तो सोचकर भी हंसी आती है यार।
0: चंद साल पहले तुम्हारे जैसे लोग चांद पर जाने वालों पर ऐसे ही हंसा करते थे।
4: ओ फिलोसोफर साहब, आप अपनी फिलॉसफी से सच को झूठ में नहीं बदल सकते।
0: अरे भाई, ये इच्छाधारी सांप सदियों से है और जो बात सदियों से सच है वो आज भी सच है, समझे?

0: गोली किसने चलाई?
1: मैंने।
0: क्यों?
1: अगर मैं गोली नहीं चलाता तो नाग उस लड़की को डस लेता।
0: वो लड़की नहीं है बेवकूफ, वो नागिन है, और जिस नाग पर तुमने गोली चलाई है उसे मैं इंसान के रूप में देख चुका हूँ, उससे बातें कर चुका हूँ।
2: लेकिन अब क्या करूँ, पिस्तौल से निकली हुई गोली वापस तो नहीं आ सकती?
0: जिस तरह पिस्तौल की गोली वापस नहीं आ सकती, इसी तरह नागिन का बदला कभी टल नहीं सकता। कहते हैं मरने वाले नाग की आंख में मारने वाले की तस्वीर रह जाती है, और नागिन उस वक्त तक चैन से नहीं बैठती जब तक वो खून का बदला न चुका ले।
3: तो अब क्या किया जाए?
0: किरण के बचने की सिर्फ एक ही सूरत है, हमें फौरन उस नाग को ढूंढ के जमीन में दबा देना चाहिए ताकि वो नागिन अपने नाग की आंख में इसकी तस्वीर न देख सके।
3: लेट्स सर्च।
0: हाँ चलो।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 1 बज रहा है। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 1 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

जब दरवाजा खुला तो मैं दंग रह गया। दो हसीन आंखें मेरी तरफ देख रही थीं और दिल धड़क धड़क के कह रहा था कि जॉनी बेटे, तेरी मंजिल यहीं पर है, लेकिन याद रख, अगर इन्हें मालूम हो गया कि तू चोर है, उचक्का है, छोटी मोटी चोरियों के इल्जाम में बार बार जेल जा चुका है, तो इन हसीन आंखों में तेरे लिए सिवाय नफरत के कुछ नहीं रहेगा।

0: यह कमबख्त याद ही तो तबाह कर देती है डॉक्टर साहब। उस गली से गुजर हुआ नहीं कि पलटना मुश्किल हो जाता।
1: फिर तो जरूर कोई ऐसी याद होगी जिसका वास्ता आपके दिल से होगा।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 2 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

0: जान जा। आएगो आएगो आएगो, ये क्या हो गया तेरे पीछे दिल ये तबाह हो गया। जी में आता है कि तुझे देखूं भी नहीं, पर क्या करूं ये दिल जो फिदा हो गया है, क्या करूं ये दिल जो फिदा हो गया। आएगो आएगो आएगो, ये क्या हो गया।
1: आएगो आएगो आएगो, ये क्या हो गया।
0: आएगो आएगो आएगो, ये क्या हो गया।
1: आएगो आएगो आएगो, ये क्या हो गया।
0: आएगो आएगो।

0: देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप करके निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम में ये मस्ती भरी रुत न चली जाए।
1: अच्छा मैं कहती हूँ

0: अडे गोद में बैठा लो बच्चे का क्या काम है।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 3 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी शाम के 4 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 4 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

दिल की। आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी शाम के 5 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 5 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

0: बरसों बाद ऊँट में निकली हूँ। ऐसा लगता है कि वो किसी और सदी की बात थी।
1: शायद उन दिनों की बात होगी जब ये इमारत अभी उजड़ी नहीं थी।
0: हाँ, पिछले किसी जन्म की बात ही तो लगती है।
1: एक काम करें, जब तक तुम यहां हो रोज घर पे खाने के लिए तो आया ही करोगी, खाने के बाद घूमने निकल आया करेंगे। कम से कम ये इमारत कुछ दिनों के लिए तो बस जाएगी। तुम्हारी शॉल कहाँ?
0: भूल गई। ना ना,
1: तुम नहीं बदलोगी।

0: सुनो जी, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये गुब्बारे
1: क्यों कर रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

हाय हेलो नमस्ते गुड इवनिंग सत श्री अकाल राधे राधे अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका रेडियो दोस्त अमन, आ चुका हूं लेकर आज का स्टार ओल्ड इज गोल्ड का ये प्रोग्राम। और आप सोचेंगे आज मैंने 1989 का गाना क्यों प्ले किया है, तो बता दूं कि अब से ओल्ड इज गोल्ड 1960 से लेकर 1989 तक के होंगे और 90 स्पेशल 1990 से होंगे 2026 तक या 27 तक जो भी होगा, मतलब अभी तक, यानी कि अब ओल्ड इज गोल्ड होगा 1960 से लेकर 1989 तक।

0: आपने ट्यून किया है रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना और सुन रहे हैं स्टार ओल्ड इज गोल्ड स्पेशल शो आरजे अमन के साथ। कल शाम 6 बजे स्टार 90s एंड न्यूज स्पेशल में सुनिए 1986 से लेकर आज तक के गाने। आप मैसेज या वॉइस रिकॉर्डिंग फरमाइश कर सकते हैं सिर्फ रेडियो हॉटस्टार के ऐप से। तो अभी डाउनलोड कीजिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना गूगल प्ले स्टोर से और सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना, जो बना दे दीवाना, बजाते रहो दिल से।
1: ओके, वेलकम बैक है एक बार फिर से और सभी सभी सभी दोस्तों का मैं वेलकम करता हूँ। सबसे पहले जुड़ने वाले सरफराज जी। सरफू भाई वालेकुम सलाम, भाई जान साउथ अफ्रीका से जुड़ चुके हैं तो वेलकम है आपका भी। और फुलेबा संजू भाव जी जुड़े हैं, बहुत बहुत वेलकम है आपका भी। और उनके बाद सर्वेश भगत जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है सर्वेश भगत जी। शेखर टेलर जी जुड़ चुके हैं, वेलकम है, नमस्कार कह रहे हैं सभी दोस्तों को। और गजानन सलकार जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है, सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार कह रहे हैं। दिगंबर जी जुड़ चुके हैं, क्या कहते हैं सुनते हैं।
2: हेलो अमन सर जी, नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। हम भी जुड़ चुके हैं आपका रेडियो हॉट स्टार,
1: धन्यवाद आपका भी। और मंगेश देशमुख जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है आपका भी। और राजू, ये क्या नाम है, बिट्टू कुमार जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है बिट्टू कुमार जी, सभी को नमस्कार कर रहे हैं। हमारी नंदनी माँ जी जुड़ चुकी हैं, बहुत बहुत वेलकम है माँ जी आपका, और आपको प्रणाम है मेरा। और यहाँ पे सुनील कुमार जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है सुनील कुमार जी। साथ ही साथ अशोक देशमुख जी जुड़ चुके हैं, नमस्कार है अशोक देशमुख जी आपका भी। और नाहिद अंसारी जी जुड़ चुके हैं, वेलकम है, वालेकुम सलाम। और हुकुमचंद जांगड़ जी जुड़ चुके हैं कोटा राजस्थान से, वेलकम है आपका भी। और काजल झक्का जी बहुत दिन बाद जुड़ी हैं, बहुत बहुत वेलकम है। और कहाँ गायब हो गई थी बीच में काजल झक्का जी, बताइएगा जरूर। और एमडी नाजिम जी जुड़ चुके हैं, वेलकम है नाजिम जी। और जितने भी दोस्त चोरी चोरी चुपके चुपके सुनते हैं, सभी का वेलकम वेलकम वेलकम है। और जुड़ चुके हैं आरजे सोनी जी, बेस्ट आरजे, इनकी आवाज बहुत खूबसूरत है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, मैं तो इनका फैन हो गया हूँ। और सबसे पहले मेरे पसंद के गाने को एंजॉय कीजिए, आते हैं इस गाने के बाद आप सभी के फरमाइश को पूरा करने।

0: तेरा दिल है।
1: बिल्कुल सुनाई देती है जिसकी धड़कन, तुम्हारा दिल या हमारा दिल है। सुनते हैं क्या कहते हैं सर्विस वगैरह।
2: आरजे अमन सर जी, सुख संध्या, नमस्कार, नमस्ते जी, हम भी जुड़े हुए हैं और आपका ओपनिंग सॉन्ग बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद।
1: थैंक यू सो मच। और सर्वजीत जी क्या कहते हैं?
3: अमन सर जी, जी नमस्ते।
1: नमस्ते,
3: मैं सर्वजीत सेठी फाजिलका पंजाब से। कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छा, बताए आपके।
3: हम भी अपने स्थान पर ठीक हैं, हम भी आपके कार्यक्रम में शामिल हो गए हैं, तो सुनते रहे रेडियो हॉटस्टार जो सबको दीवाना बना दे।
1: धन्यवाद आपका भी। और अनिल मेहता जी क्या कहते हैं?
4: हेलो आरजे अमन सर, मुहर्रम ताजिया से पहले आपसे बात की थी और उससे पहले आवाज़ आपकी सुनी थी। आज 3-4 दिन हो गए आपकी आवाज़ नहीं सुनी है, आज सुनने को मिल रहा है।
1: अच्छा।
4: बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके लाइव शो में मैं भी जुड़ गया हूँ मेरी
1: बहुत
4: पसंद के साथ। ओके, थैंक यू आरजे अमन सर जी।
1: वेलकम है अनिल मेहता जी। और ज्योति खटवड़े जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है ज्योति खटवड़े जी आपका भी। जाकिर खान जी क्या कहते हैं? सुनते हैं।
5: अस्सलाम वालेकुम अमन सर जी, मैं जाकिर खान, जिला शिवपुरी, मध्य प्रदेश से जुड़ चुका हूँ आपके प्यारे से शो ओल्ड इज गोल्ड में, और आपका सॉन्ग बेहतरीन, लाजवाब, थैंक यू।
1: वेलकम जी आपका भी। और अरुण मंडल जी जुड़ चुके हैं, तो वेलकम है अरुण मंडल जी आपका भी। और मोहन निवारी जी जुड़ चुके हैं, वेलकम है आपका भी। बाबूलाल लंजाना जी जुड़ चुके हैं, आपके भी वेलकम है। और सुनीता गोप जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है। दोस्तों आप पहले लगातार मुझे मैसेज करते थे, जिससे मुझे डेली करीब यानी कि 750-800 मैसेज आपके प्राप्त होते थे और उसमें होड़ लगी रहती थी यानी कि टॉप 10 में नंबर 1 पे कौन आएगा। एक्चुअली मैं आप सबके मैसेजेस को देखकर एक निर्णय लिया था कि जैसे कि हर दिन जो एक दो ही यानी लिसनर ऐसे होते हैं कि हमेशा यानी कि टॉप यानी 1-3 पे आते थे, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड पे आते थे, जो बाकी दोस्त मेहनत करते थे उनका मैसेज मतलब यानी ऊपर पहुंच नहीं पाता था, वो लोग आने ही नहीं देते थे, मतलब इतने ज्यादा मैसेज करते थे कि जो लोग यानी वो भी कोशिश कर रहे हैं उनकी कोशिश मतलब बिल्कुल नाकाम हो जाती थी, और जो दोस्त अधिक से अधिक इन मैसेज करते थे वो एक नंबर में आ जाते थे, वो फर्स्ट सेकंड थर्ड हो जाते थे और मुझे हमेशा उन्हीं को कॉल करना पड़ता था। तो इसलिए आप सबकी वो मतलब जो लोग यानी कि जिनका नंबर नहीं आ पाता था तो उसको उनको भी ध्यान में रखते हुए मैंने तो पहले यानी कि टॉप 5 किया और टॉप 5 में मैंने वो लॉटरी सिस्टम लगा, फिर यानी देखा कि नहीं इससे भी काम नहीं चल रहा है, तो फिर मैंने यानी कि टॉप 10 में से जितने भी यानी कि जो भी दोस्त अपना यानी कि प्रयास करते हैं भले ही वो एक नंबर तक पहुंच नहीं पाते हैं लेकिन हमारे लिए सभी लिस्टनर एक बराबर हैं। मेरे लिए कोई यानी छोटा या कोई बड़ा नहीं है, मेरे लिए सभी इम्पोर्टेंट है और सभी एक समान है। तो मैंने ये सोचा था कि टॉप 10 में से मैं किसी का नंबर निकालूंगा और वहां से जो मतलब आप भाग्य भरोसे उनके यानी कि लक बाई चांस उनके ऊपर यानी डिपेंड करता है, उनका लक अगर साथ दिया, अगर उनका नाम आता है तो बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक मैं उन्हें कॉल लगाता हूं, उनके गाने को प्ले करता हूं। हां ये बात और है कि मैं अभी यानी कि मैं कॉल नहीं लगाता हूं, अब सिर्फ उनके नाम से गाने प्ले करता हूं, ऐसा होता है। तो आप सब इसकी वजह से चूंकि अब आप यानी कि टॉप 10 में नहीं आ रहे हैं या फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं आ रहे हैं, आप लोगों ने फीडबैक देना यानी कम कर दिया है, तो प्लीज ऐसा ना करें। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप जैसे पहले हमेशा मैसेज करते थे वैसे अपनी वो यानी कि व्यवस्था बनाए रखें कि ताकि हमें भी अच्छा लगे, प्रोग्राम करने में भी अच्छा लगे और आपको भी अच्छा लगे। तो हाँ ये है कि कभी आपका नंबर आएगा, कभी किसी का आएगा, वो टॉप 10 में जो भी आएगा मैं उनके गाने में जो भी होगा, अगर मैं मतलब मेरे पास जैसे समय होंगे, अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड के लिए कॉल करना होगा तो 1-3 निकालूंगा या जैसे भी हो सकता है जो पॉसिबिलिटी होगी वो मैं निर्णय लूंगा। और जो दोस्त यानी कि टॉप 10 में बने रहेंगे उनमें से किसी एक का या दो का या तीन का जैसे समय रहेगा वैसे मैं उनके गाने को प्ले करूंगा। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज आप लोग पहले जैसा फीडबैक वाला देते रहेंगे ताकि मैं घबरा जाता था कि भाई कितने सारे फीडबैक आते हैं। कोई बात नहीं, चलिए फिलहाल मैं प्रोग्राम का आगाज करता हूँ। सबसे पहले उन यानी कि 5 दोस्तों के गाने में प्ले करने वाला हूँ जिनको भेजा है आत्मराम पाटिल जी ने और सर्वेश भगत जी ने, अशोक देशमुख जी ने, अनिल मेहता जी ने और नंदलाल यादव जी। इन 5 दोस्तों की मिलीजुली फरमाइश है लेकिन ऑडियो मेरे पास 2 दोस्तों की है, एक हमारे सर्वेश भगत जी की है और एक है अनिल मेहता जी का। तो पहले सर्वेश भगत जी।
2: आरजे अमन सर जी, शुभ संध्या, नमस्कार, नमस्ते जी। आज हमारा फरमाइश का फिल्म है दुनियादारी, गाने का वाला है नाव कागज की गहरा है पानी। हॉट स्टार जो सबको दीवाना बना दे, सभी बड़े को प्रणाम को आशीर्वाद। हम सर्वेश भगत हजारा जिला वैशाली बिहार से बोल रहे हैं। हमारा परिवार सतीश भगत, हेमंत भगत, वर्षेश्वर भगत, आनंद शेखर, प्रभात, सुनी कुमारी, मनी कुमारी, सूरज कुमार, मनोज जायसवाल, अशोक देशमुख भाई जी, आत्माराम पाटिल जी, अनिल मेहता जी और नंदलाल यादव जी, आरजे अमन सर जी, सुंदरता की मूर जी, आरजे वंशिका जी, आरजे रत्ना जी, आरजे एम एस परमार जी, सभी आरजे और सभी भाई और सभी बहन और सभी लिसनर्स में सभी को सुना दीजिएगा। जयराम जी,
1: थैंक यू सो मच सर्वेश भगत जी। और इसी गाने के लिए जैसे कि अनिल मेहता जी का भी ऑडियो आया हुआ है।
4: हेलो आरजे अमन सर, नमस्ते, गुड इवनिंग। आज के ओल्ड इज गोल्ड में मुझे गाना सुनना है। फिल्म का नाम है दुनियादारी, नाव कागज का गहरा है पानी, ये गाना सुनना है। और साथ साथ मेरे दोस्त आदरणीय सरस भगत जी को और हम पांचों दोनों को, पांचों फ्रेंडों को एक साथ ये गाना सुनना है। ओके, थैंक यू।
1: ओके जी, तो और इसी गाने में जैसे कि मैंने कहा कि हमारे वो आत्माराम जी भी हैं और नंदलाल जी भी हैं, अशोक देशमुख जी भी हैं, मतलब यानी कि पांचों दोस्तों की मिली जुली फरमाइश में प्ले कर रहा हूँ नाव कागज की गहरा है पानी। इंजॉय कीजिए।

0: ओह माय गॉड, हाँ अब ये रहा कि अब दोस्तों के मैसेजेस बहुत सारे हुए हैं। थैंक यू सो मच, आप सबने मेरी बातों को माना, आपने सम्मान किया, मैं आप सभी का सम्मान करता हूँ। सबसे पहले जुड़ने वाले हैं, यहाँ पे जुड़ चुके हैं राधा कृष्ण गोप जी, सभी दोस्तों को ये नमस्कार कह रहे हैं, वेलकम है राधा कृष्ण गोप जी। अर्षद जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है आपका भी। और ओके अर्षद जी, अपना गाना आप यानी कि सॉन्ग रिक्वेस्ट के माध्यम से भेज सकते हैं, नो प्रॉब्लम, मैं कोशिश करूंगा आपके गाने को प्ले करने के लिए। और सर्वेश भगत जी क्या कहते हैं?
1: आरजे मन सर जी, धन्यवाद, लाख लाख धन्यवाद, हमारा पांच भाई का फरमाइश अपने प्रोग्राम में जगह दे दिए आपको, लाख लाख धन्यवाद, थैंक यू सर,
0: वेलकम जी आपका भी। और प्रमोद कुमार जी जुड़ चुके हैं, लिखते हैं कि वाह ये पांचों दोस्तों की पसंद सुपर हिट लगी है, धन्यवाद देते हैं। और हुकुम चंद जी लिखते हैं कि पांचों मित्रों की फरमाइश मुझे बहुत ही लाजवाब लगी है, सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा मैं। ज्योति खटवड़े जी लिखते हैं कि अमन जी हम भी तो यही चाहते हैं कि सबको इन मौका मिले, और हर दिन यानी कि वही लिसनर यानी विजेता बनते हैं, तो आपने ये फैसला करके अच्छा किया है, थैंक यू सो मच, आपका भी धन्यवाद, आपने हमारी जज्बातों को भी समझा, थैंक यू सो मच। ज्योति जी मैं भी तो यही चाहता हूँ कि सभी को मौका मिलना चाहिए, हर कोई एक ही दिन अगर बनेगा तो ये अच्छी बात नहीं है ना, इसीलिए ऐसा मुझे फैसला करने पर आप लोगों ने ही मजबूर किया है, ये इसलिए ऐसा हुआ है। मोहन हमारे जी लिखते हैं कि हमारे पांचों दोस्तों की पसंद सुपर डुपर हिट लगी, सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा इसका।

0: मेरा प्यार भरा नमस्कार है और सभी का गाना मुझे लाजवाब लगा है। सभी को धन्यवाद देते हैं गाने में शामिल करने के लिए। नंदनी माँ लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना है ये। जी बिल्कुल। और नाजिम जी लिखते हैं कि सुपर हिट पसंद है, थैंक यू सो मच। और मुबारक हुसैन जी लिखते हैं कि अमन जी लाजवाब पसंद करने के लिए सभी दोस्तों को धन्यवाद देना चाहूंगा और प्रोग्राम तो ललन टॉप हो रहा है, लाजवाब हो रहा है, थैंक यू सो मच। जी फीडबैक बोलिए जी क्या।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आरजे अमन सर जी आपका, आपने हमारी पांचों भाइयों का फरमाइश प्ले कर दिया, धन्यवाद शुक्रिया
0: जी। वेलकम है आपका भी। और दिगंबर जी क्या कहते हैं, सुन लेते हैं इनकी भी।
2: वाह वाह वाह क्या बात है अमन सर जी, पांचों दोस्तों की मिली जुली फरमाइश हमारे सर्वेश भगत जी की सुपर स्टार, एकदम सुनकर आनंद ही आ गया
0: जी। बिल्कुल धन्यवाद देते हैं आपको भी। और जाकिर खान लिखते हैं कि गुजरी हुई जिंदगी को तू कभी याद न कर, लिखते हैं कि गुजरी हुई जिंदगी को तू कभी याद न कर और तकदीर में जो लिखा हुआ है उसकी फरियाद न कर, जो होगा वो होकर रहेगा और तू कल की फिक्र में आज की हंसी बर्बाद न करा है। क्या बात है, बहुत अच्छा लिखा आपने। संतोष गौंड जी लिखते हैं कि हम भी जुड़ गए जी। जी वेलकम है संतोष गौंड जी। गोविंदा खंडाडे जी जुड़ चुके हैं, वेलकम है आपका भी। और लतीफ अहमद जी जुड़ चुके हैं, तो लिखते हैं कि जहां हर धुन दिल को छू जाए बार बार, वही बजता है अपना रेडियो हॉट स्टार आर जे अमन का प्यार, और सुनते रहे रेडियो हॉट स्टार जो दीवाना बनाते। लतीफ जी आज आपने 90 का गाना भेजा, वो तो प्ले नहीं होगा, आज चल रहा है ओल्ड इज गोल्ड, तो ओल्ड इज गोल्ड गाने की फरमाइश करें। एंड सरफराज जी जुड़ चुके हैं बुलंद शहर वाले, बहुत बहुत वेलकम है। अगली फरमाइश जो मैं लेने वाला हूँ वो गजानन सरोकार जी का ग्रुप का मैं लेने वाला हूँ, तो मैं सुनवाता हूँ उनके ग्रुप की फरमाइश, पहले ये ऑडियो सुनता हूँ।
3: रेडियो हॉट स्टार सुन रहे सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आरजे अमन सर जी,
0: जी, जी, जी
3: आपको भी हमारा दिल से प्यार भरा नमस्कार।
0: नमस्कार
3: अमन सर जी,
0: जी, जी।
3: कैसन बानी?
0: कैसन बानी?
3: ओके अमन सर जी, हम भी बहुत ही बढ़िया बानी। अमन सर जी, मैं फूले भक्त संजू भाऊ बोदवड़ महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ। आज है सोमवार और आज की अपनी थीम है स्टार ओल्ड इज गोल्ड, और सर आज के कार्यक्रम में सभी ओल्ड इज गोल्ड गीत चलने वाले हैं, तो हमने भी एक ओल्ड इज गोल्ड गीत चुना है सर। फिल्म का नाम है राजकुमार और यह फिल्म 1982 में सर रिलीज हुई थी। आप हमें इसी फिल्म का एक सदाबहार गीत सुना दीजिए, जिसे आवाजें दी है स्वर्गीय किशोर कुमार जी इन्होंने, और यह गीत राजेश खन्ना जी और हेमा मालिनी जी इनके ऊपर चित्रित किया गया है सर।
0: अच्छा।
3: तो और गीत के बोल सर इस प्रकार है।

0: मेरे संग संग, मेरे संग संग, मेरे संग संग आया तेरी यादों का मेला, मेरे संग संग आया तेरी यादों का मेला। अमन सर जी,
1: जी
0: आप ये गीत सुना दीजिए और डेडिकेशन में याद करूंगा सर। सबसे पहले आपको वेलकम अमन सर जी, बाद में आपके सुंदरता की मूर्त, क्योंकि सर ये गीत आप गा रहे आपकी सुंदरता की मूर्त के लिए, तो ये गीत मैं उनको भी डेडिकेट करूंगा सर। धन्यवाद सर उनके लिए भी। बाद में चुलबुली आवाज की मलिका मेरी छोटी और प्यारी बहन आरजे वंशिका जी, आरजे परमार जी और रेडियो टू स्टार सुन रहा मेरा पूरा परिवार, यह गीत मैं सभी को डेडिकेट करूंगा सर, प्लीज सुना दीजिए। रेडियो टू स्टार जो दीवाना बना दे, आरजे अमन जी और आरजे वंशिका जी के साथ, मैं फुले भक्त संजू भाऊ, धन्यवाद।
1: धन्यवाद फुले भक्त संजू भाऊ जी और हमारे गजानन जी के पूरे ग्रुप के इसमें लोग शामिल है। तो सुनवाता हूँ ये गाना, अकेला गया था मैं, मेरे संग संग आया। और बता दूं कि बहुत से दोस्त मुझे इन व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं, तो मैं व्हाट्सएप अब रेडियो हॉटस्टार के लिए इस्तेमाल नहीं होता है, सिर्फ इस्तेमाल होता है एक दिन, अंतरा मस्ती के दिन या गीत मस्ती के दिन, बस, और किसी दिन व्हाट्सएप का इस्तेमाल नहीं होता। तो प्लीज आप मुझे रेडियो हॉटस्टार के ऐप से ही मैसेज करें। धन्यवाद।

0: मेरे संग संग आया तेरी यादों का मेला। अशोक देशमुख जी लिखते हैं कि गजानंद जी के ग्रुप की फरमाइश भी मुझे सुपरहिट लगी है, धन्यवाद देते हैं गजानंद जी को। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि रेस्पेक्टेड दोस्त गजानंद जी और संजू भाव जी की पसंद ग्रुप फरमाइश शानदार लगी है, सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा मैं। और गजानंद जी लिखते हैं आदरणीय अमन जी को प्यार भरा नमस्कार, हम सभी साथियों की फरमाइश को प्ले करने के लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद है। और अनिल मेहता जी क्या कहते हैं,
1: वाह बहुत ही लाजवाब गाना राजपूत फिल्म से है। और अकेला गया था मैं न आया केला, मेरे संग संग आया तेरी यादों का मेला। मेरी भी ये पसंद है, आई लाइक सॉन्ग, बहुत अच्छा गाना फरमाइश की है, धन्यवाद आपका बहुत बहुत।
0: धन्यवाद देते हैं आपको भी। और नाही जी लिखते हैं कि गुरु फरमाइश मुझे शानदार लगी, थैंक यू सो मच सभी को। एंड सर्वजीत जी लिखते हैं कि ये राजपूत फिल्म का गाना मुझे बहुत लाजवाब लगा, धन्यवाद देते हैं सभी दोस्तों को। और दत्ता कलम जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है दत्ता कलम जी। मोहन नवाई लिखते हैं कि हमारे गुरु यानी के ये गजानंद जी के गुरु फरमाइश को प्ले करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी दोस्तों का। और बाबूलाल जी लिखते हैं कि हमारे दोस्त गजानंद जी की फरमाइश मुझे बहुत अच्छी लगी है, थैंक यू सो मच गजानंद जी। शेखर टेलर जी लिखते हैं अमन सर जी आपने मेरा ऑडियो नहीं चलाया, अगर आपने ऑडियो इन व्हाट्सएप पे भेजा होगा तो नहीं प्ले होता है क्योंकि अब व्हाट्सएप इस्तेमाल नहीं किया जाता है, आपको भेजना होगा तो यहीं भेजिएगा ऑडियो तो यहाँ पे बिल्कुल प्ले होगा, नहीं तो सॉन्ग रिक्वेस्ट में भी ऑडियो भेज सकते हैं। अगर ये तभी काम करेगा जब आप रेडियो हॉटस्टार के एप्लीकेशन को अपडेट कीजिएगा, बिल्कुल यानी कि नया ऐप को अपडेट कीजिए, आपका प्रॉब्लम शट आउट हो जाएगा अगर कोई प्रॉब्लम हो तो। ओके और ज्योति जी लिखते हैं लाजवाब पसंद चल रहा है, थैंक यू सो मच। एंड दिगंबर जी क्या कहते हैं,
2: क्या सुपर सॉन्ग है अमन सर जी, ओल्ड एज गोल्ड सुपर होने वाला
0: है जी, बिल्कुल बिल्कुल होने वाला है। सर्वेश भगत जी क्या कहते हैं,
3: अर्जय अमन सर जी,
0: जी जी
3: फूले वक्त संजू भाव गजाना सुलोकर का पूरा ग्रुप का भाई अपने गाने में शामिल किए हैं, सभी को धन्यवाद देते हैं,
0: धन्यवाद देते हैं आपको भी। एंड आत्माराम जी क्या कहते हैं सुनते हैं, आत्माराम जी का कोई आवाज नहीं आया है। और राधा कृष्ण को देखते हैं कि सुपर हिट लाजवाब फरमाइश के लिए धन्यवाद देते हैं। नाजिम जी देखते हैं कि संजू भाव जी धन्यवाद, ऑसम सॉन्ग आपका लगा मुझे बिल्कुल। ओके और अगली बात इसी बात पे अगली फरमाइश, हाँ अगला जो गाना है वो मैं प्ले करने वाला हूँ जो बहुत ही प्यारा है, जिसे एमडी नाजिम जी ने भेजा है। एमडी नाजिम जी ये लिखते हैं कि गुड इवनिंग अमन सर जी, मूवी का नाम रोमांस, मांग लूंगा मैं तुझे तकदीर से। सबसे पहले आपको आरजे वंशिका जी को, ईश्वरलाल मेहर जी को, संजू भाव जी को, सर्वेश भगत जी को, रोहित कुमार जी को, नाहिद जी को एंड इन कुंता बेनी जी को, सभी दोस्तों को डेडिकेट करना चाहता हूँ मैं, तो सुनवा रहा हूँ, एंजॉय कीजिए। मांग लूंगा मैं तुझे तस्वीर से, सच में मांग लूंगा मैं तुझे, यानी क्योंकि जी नहीं भरता तेरी तस्वीर से, सही बात है ना, एंजॉय कीजिए इस गाने को। मांग

0: वेलकम बैक और फीडबैक आ चुके हैं मेरे पास बहुत सारे। अब लग रहा है कि फीडबैक आ रहे हैं मेरे दोस्तों का। रवि मौर्य जी लिखते हैं कि गुड इवनिंग, हम भी जुड़ गए जी, वेलकम है रवि मौर्य जी। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि ऑसम पसंद सॉन्ग सुनने के बड़ा मजा आ गया सुन के। नाहिद जी लिखते हैं कि वाह बहुत खूबसूरत फरमाइश है। नाजिम जी थैंक यू सो मच फॉर डेडिकेशन। एंड आत्माराम जी क्या कहते हैं सुनते हैं।
1: हेलो अमन सर जी,
0: जी जी बोली जी,
1: मांग लूंगा मैं तुझे तकदीर से, बहुत बढ़िया गाना। और इससे पहले गजानन बहु सालोकर का पूरा ग्रुप, इससे पहले हमारी मिली जुली सभी भाइयों की पसंद, वाह वाह वाह। और जुड़ गए हम भी प्रोग्राम से, शुक्रिया सभी को। आत्माराम पाटिल
0: जी, जी बहुत बहुत वेलकम है आपका आत्माराम पाटिल जी। और नाजिम जी लिखते हैं थैंक यू सो मच अमन जी गाना प्ले करने के लिए, दोस्तों का भी धन्यवाद। और हुकुम चंद जी लिखते हैं बहुत ही शानदार गाने के लिए, थैंक यू सो मच नाजिम जी। एंड ये फिर सुन लेते हैं।
2: अमन सर जी, अभी जो फरमाइश चल रही है हमारे प्रिय मित्र एमडी नाजिम जी, इनका गीत हमें बहुत अच्छा लगा और इनका गीत दिल को छू गया। मैं इनको दिल की अनंत गहराइयों से धन्यवाद बोलना चाहूँगा इतना अच्छा गीत सुनवाने के लिए और हमें अपने गीत में याद करने के लिए। थैंक यू सो मच नाजिम जी, आपने इतना अच्छा गीत सुनवाया। और इनके पहले आपने हमारे ग्रुप फरमाइश चलाई सर, तो आपको मैं तहे दिल से धन्यवाद और शुक्रिया बोलना चाहूँगा। आपने हमारी ग्रुप फरमाइश चलाई और हमारे ग्रुप फरमाइश को अपने कार्यक्रम में जगह दी। अमन सर जी हमारे गीत को 400 चांद लग गए, साथ में अपने गुनगुनाया। थैंक यू सो मच, आपने हमारी गीत फरमाइश चलाई और हमारे फरमाइश के पहले आपने हमारे हॉटस्टार के नियमित दिग्गज श्रोता आदरणीय सर्वेश भगत जी, आदरणीय अशोक देशमुख जी, आदरणीय आत्माराम पाटिल जी, अनिल मेहता जी और नंदलाल यादव जी, इन पांच दोस्तों की आपने मिलीजुली फरमाइश चलाई सर, तो उनका गीत भी सर एकदम दिल को छू गया और उनकी फरमाइश काबिले तारीफ थी। और उनके पहले आपने आपका ओपनिंग गीत चलाया सर, तो मजा आ गया। आज का कार्यक्रम भी आप अनोखे अंदाज में सजा रहे हो सर। पिछले दो दिनों से आपकी प्यारी और मीठी आवाज हमारे कानों में नहीं घुली सर, तो बेचैन थे, आज आपकी आवाज सुनी
0: मैं तो दिल को
2: सुनाया। न जाने सर आपका और हमारा क्या रिश्ता है, जब भी आपसे बात होती है आपकी आवाज सुनते हैं दिल को सुकून मिलता है सर। इसी को तो सर प्यार कहते हैं, मुझे ऐसा लगता है।
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
2: और आपने जो निर्णय लिया है सर, जो लिटिल बोट के विनर रहते हैं सभी को बारी बारी मौका मिलना चाहिए, तो मैं आपका जो फैसला है सर सराखों पे काबिले तारीफ रहा सर। क्योंकि सर इससे क्या होगा, सभी दोस्त एक्टिव रहेंगे और सभी को आशा रहेगी कि हमें कॉल कर सकते हैं और हमें हमारी बात सुन सकते हैं और हमारी फरमाइश चल सकती है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
2: थैंक यू सर, आपने इतना बदलाव लाया। मैं फुले भक्त संजू बाहू, रेडियो ऑटो स्टार जो दीवाना बना दे, आरजे अमन जी के साथ। थैंक यू,
0: वेलकम जी आपका भी। और साथ ही साथ राधा कृष्ण गोप लिखते हैं कि बहुत ही खूबसूरत फरमाइश है, थैंक यू सो मच। और मोहन भाई लिखते हैं कि वाह बहुत ही सुपर गाना सुनने को मिला है, मुझे बहुत अच्छा लगा इस गाने को सुनकर। और बाबूलाल जी लिखते हैं कि नाजिम जी की पसंद मुझे बहुत ही पसंद आई है। एंड दिगंबर जी क्या कहते हैं सुन लेते हैं इनके लिए।
3: सुपर सुपर लाजवाब सॉन्ग, हमारे दोस्त की फरमाइश एकदम सुनकर आनंद ही आ गया।
0: ओके जी, धन्यवाद आपका भी देते हैं दिगंबर जी आपका। और मनीषा जी जुड़ चुकी हैं, बहुत बहुत वेलकम है मनीषा जी। लिखते हैं कि नमस्ते, और दोपहर में पता नहीं पाई लेकिन आज प्रोग्राम अच्छा हो रहा है। बिल्कुल, तो बहुत बहुत आपका वेलकम है मनीषा जी। और ज्योति जी लिखते हैं कि बहुत ही ब्यूटीफुल पसंद है। साथ ही साथ जाकिर खान लिखते हैं कि ऑसम चॉइस नाजिम जी की, थैंक यू सो मच। नंदिनी माँ लिखते हैं कि बहुत ही सुपरहिट गाना है, बहुत अच्छा लगा ये गाना सुनकर। लतीफ जी लिखते हैं कि अल्फाज उसके सीधा दिल में असर करते हैं। और अर्जमन जी, ये चाहने वाले पे शहर में रहते हैं, अच्छा ओह क्या बात है। और यहाँ पे अकबर खान जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है, वालेकुम अस्सलाम जी आपका भी। और इसी बात पर अगला जो गाना मैं प्ले करने वाला हूँ वो है यानी कि तू लड़की नंबर वन है, बलदेव राज जी की पसंद है। बलदेव राज जी क्या कहते हैं, लिखते हैं कि नमस्ते अमन सर जी, मैं बलदेव राज, मैं सिटी डेरा बाबा नायक से हूँ और मुझे गाना सुनना है तू लड़की नंबर वन है। और सबसे पहले अमन जी आपको और सभी दोस्तों को डेडिकेट, मेरे यार जस बराड़ जी को स्पेशली डेडिकेट है, जितने भी दोस्त सुन रहे हैं सभी दोस्तों को डेडिकेट करना चाहता हूँ। मैं तो सुनवा रहा हूँ, तू लड़की नंबर वन है, बिल्कुल नंबर वन है।

0: बिल्कुल, तू लड़की नंबर वन है, नंबर वन है, नंबर वन है, गाना भी नंबर वन है, फीडबैक भी नंबर वन है।
1: आरजे अमन सर, एक से एक बढ़कर गाने की पसंद चल रही है। वाह, अभी जो गाना बजा वो भी बहुत अच्छा लगा और सुनकर बहुत अच्छा सुनने को लगा। थैंक यू और धन्यवाद देते हैं।
0: वेलकम जी आपका भी। और उनके बाद रवि मार जी लिखते हैं कि मांग लूंगा मैं तुझे तस्वीर से, सुपरहिट लाजवाब गाना लगा है, मुझे बहुत पसंद है ये गाना। ज्योति जी लिखते हैं कि वाह वाह वाह, ब्यूटीफुल पसंद है भाई साहब की। और मीना जी लिखते हैं कि हम भी जुड़ गए जी। मीना जी यूएस से हैं, बहुत बहुत वेलकम है। और सभी दोस्तों को गुड इवनिंग कह रही हैं। नाजिम जी लिखते हैं कि ऑसम सॉन्ग सुनने को मिल रहा है मुझे बाबू। और राधा कृष्ण को लिखते हैं कि सुपरहिट फरमाइश, लाजवाब फरमाइश। एंड रीता जी जुड़ चुकी हैं, बहुत बहुत वेलकम है। लिखते हैं कि गुड इवनिंग अमन सर जी, एंड सुपर सॉन्ग चल रहा है, थैंक यू सो मच एंड वेलकम रीता जी आपका। एंड हुकुम चंद जी लिखते हैं कि बलदेव राज जी की पसंद मुझे बहुत ही पसंद आई है। अकबर खान जी लिखते हैं कि अंदाज जिनका सबसे निराला है। अच्छा, लिखते हैं कि अंदाज जिनका सबसे निराला है, हर लफ्ज में अपनापन और उजाला है, आवाज में ऐसी मिठास है कि दिल छू जाए, रेडियो हॉटस्टार की पहचान, हमारे प्यारे अमन जी। ओ माय गॉड, थैंक यू सो मच। मुस्कुराहट में महफिल की सजा देते हैं। अच्छा, लिखते हैं कि मुस्कुराहट से महफिल सजा देते हैं, अपनी बातों से हर दिल जीत लेते हैं, ऐसे शानदार एंकर को दिल से सलाम। अमन जी आप यूं ही सफलता की बुलंदियां छूते रहे। ओ माय गॉड, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अकबर खान जी इतना प्यारा मैसेज के लिए आपके। बाबूलाल जी लिखते हैं कि बलदेव राज जी की पसंद मुझे बहुत ही पसंद आई है। एंड नाही जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारी पसंद है हमारे बलदेव राज जी की। एंड यहाँ पे सुनील कुमार जी लिखते हैं कि ये लोहा फिल्म का गाना मुझे बहुत ही पसंद आया, थैंक यू सो मच। एंड ओके, और यहाँ पे लतीफ जी लिखते हैं कि सभी की गर्लफ्रेंड नंबर वन होती है। हाँ हाँ, आपकी गर्लफ्रेंड नंबर वन है, मुझे पता है। ओके जी, और इसी बात पर अगला जो गाना है ये मैं प्ले करने वाला हूँ, मनीषा जी की पसंद है। और मनीषा जी आज सुनना चाहती है फिल्म ये अनपढ़ का गाना, लता मंगेशकर की आवाज में, आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे। जी बिल्कुल, इंजॉय कीजिए, सुनवा दिया।

0: आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, थैंक यू सो मच एंड हुकुम तंजी लिखते हैं ओल्ड इज गोल्ड, लाजवाब फरमाइश एंड यहाँ पे प्रमोद जी लिखते हैं कि लाजवाब लाजवाब लाजवाब सॉन्ग चल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ज्योति जी लिखते हैं कि मनीषा जी आपकी पसंद सुपर लाजवाब, हमें डेडिकेट करने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद है। ये फीडबैक सुन लेते हैं।
1: अमन सर जी, लोहा मूवी का गीत, चांदी जैसा मन है, सोने जैसा मन है, तू लड़की नंबर वन है, तू लड़की नंबर वन है, वाह वाह वाह, मंदाकिनी पर चित्री, बहुत बढ़िया गाना सर, शुक्रिया सभी को, मैं आत्माराम पाटिल, थैंक यू,
0: धन्यवाद आपका आत्माराम जी। और ये क्या कहते हैं सरोज भगत जी?
2: जी अमन सर जी, मनीषा शर्मा जी अपने गाने में शामिल किए, धन्यवाद देते हैं जी,
0: धन्यवाद आपका भी। और ये क्या कहते हैं सुनते हैं।
3: आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, दिल की ऐ धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा। अमन सर
0: जी,
3: लता मंगेशकर की आवाज में बेहद सुपरहिट सॉन्ग चल रहा है, मैं भी जुड़ गया हूँ
0: जी। जी बहुत बहुत आपका वेलकम है भाई अनिल प्रकाश जी। और राधा कृष्ण गोप लिखते हैं कि ओल्ड इज गोल्ड, बहुत ही प्यारा गाना लगा सुनने को मिला, मजा आ गया। बाबूलाल जी लिखते हैं कि आपकी नजरों ने समझा, बहुत ही सुपरहिट फरमाइश। एंड यहाँ पे मनीषा जी लिखते हैं कि थैंक यू सो मच सर मेरा गाना प्ले करने के लिए। मीना जी लिखते हैं वाह वाह वाह, मनीषा जी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इस गाने के लिए। और लतीफ जी लिखते हैं कि योर वर्ड्स एंड प्योरिटी क्रिएट ए ब्यूटीफुल ब्लेंड, थैंक यू सो मच भाई लतीफ जी। और फिलहाल अगला जो मैं गाना प्ले करने वाला हूँ वो अमीना खान जी का, अमीना खान जी झूमता, ये मस्त महीना वाला गाना, या अल्लाह।

बिल्कुल दिल ले गई है जी, और बहुत सारे फीडबैक आ चुके हैं। नाजिम दिल लिखते हैं कि ये मुकेश की औसम आवाज में ये गाना मुझे अच्छा लगा है। और ज्योति जी लिखते हैं कि अमन जी यहाँ अमीना जी की पसंद मुझे बहुत ही अच्छी लगी है, वर्ल्ड इज गोल्ड सुपर फरमाइश। बाबूलाल जी लिखते हैं कि अमीना जी की पसंद बहुत ही प्यारी लगी है मुझे। और राधाकृष्ण गोप लिखते हैं कि वर्ल्ड इज गोल्ड, वाह क्या गाना है, दिल खुश करने वाला, धन्यवाद देते हैं अमीना जी को। एंड नाहिद जी लिखते हैं वेरी वेरी वेरी ये बहुत ही प्यारी फरमाइश है, ओके जी। और यहाँ पे प्रकाश जी लिखते हैं कि सुपर सॉन्ग है। और अपरमोद जी लिखते हैं कि लाजवाब पसंद चल रहा है नाहिद। और हमारी ये नंदनी मां लिखती हैं कि ये मनीषा जी की पसंद और अमीना जी की पसंद मुझे बहुत ही पसंद आई है, धन्यवाद देते हैं। दत्तक्रम जी लिखते हैं कि अमीना खान जी का गाना मुझे बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद देते हैं। इसी बात पर दो दोस्तों का गाना मैं प्ले करने वाला हूँ, एक है राधा कृष्ण गोप, नहीं राधा कृष्ण गोप नहीं है, ये बाबूलाल अंजाना जी हैं। और बाबूलाल अंजाना जी के साथ साथ हैं हमारे ये सुनील कुमार जी। तो सुनील कुमार जी और बाबूलाल अंजाना जी दोनों की सेम पसंद है, और वो पसंद है कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, कजरे ने ले ली मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। इंजॉय कीजिए, सभी के लिए डेडिकेट है। और पहले बहुत से दोस्त आते थे यार, सभी गायब हो गए, जैसे कि मिराज जी, और भी नाम याद नहीं आ रहा है हमारे इसहाक जी।

0: वेलकम बैक और बहुत सारे फीडबैक आ चुके हैं मेरे पास। और यहाँ पे दत्ता जी लिखते हैं कि बाबूलाल अंजना जी और सुनील कुमार जी आप दोनों की पसंद मुझे बहुत ही पसंद आई, थैंक यू सो मच दोनों दोस्तों को। हुकुम चंद जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारी पसंद है वर्ल्ड इज गोल्ड, थैंक यू सो मच। एंड मीना जी लिखते हैं कि बहुत ही ब्यूटीफुल गाना है, ऑसम सॉन्ग है, थैंक यू सो मच दोनों दोस्तों के लिए। ज्योति जी लिखते हैं कि दोनों दोस्तों की पसंद लाजवाब। एंड नाहिद जी लिखते हैं कि दोनों दोस्तों की पसंद सुपर हिट लगी है, थैंक यू दोनों दोस्तों को। एंड बाबूलाल जी लिखते हैं अमन जी दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा, आपने मेरी फरमाइश को प्ले किया। एंड ये फीडबैक सुनते हैं।
1: अमन भैया नमस्कार, मैं थोड़ा बाजार में था और आपको शोर हो रही होगी, आपने मेरी पसंद का गाना प्ले किया, आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। और सभी दोस्तों को फीडबैक देने के लिए धन्यवाद, मैं सुनील कुमार बांका बिहार से।
0: धन्यवाद आपका भी। और हमें नंदनी मालिक थे कि सभी गाने बहुत ही प्यारे प्यारे आज प्ले हो रहे हैं। हाँ हमें पता है कि आप तो ओल्ड इज गोल्ड की दीवानी है माजी, इसीलिए। और विलास निकंज भी जुड़ चुके हैं, वेलकम है सर जी आपका, बहुत बहुत वेलकम है। राधा कृष्ण गोप लिखते हैं कि इस गाने ने तो मेरा दिल मचल गया, एक नंबर पसंद है, धन्यवाद देते हैं। एंड संतोष गौंड जी लिखते हैं अमन सर जी बहुत बढ़िया प्रोग्राम चल रहा है, ओल्ड इज गोल्ड, सभी दोस्तों को धन्यवाद देना चाहूंगा मैं। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि वाह वाह वाह मजा आ गया। एंड अरुण मंडल जी लिखते हैं कि ये कचरा मोहब्बत वाला मस्त गाना लगा मुझे। एंड और लतीफ जी लिखते हैं कि अमन सर जी बहुत ही आप खुश मिजाज इंसान लगते हैं, बिल्कुल। और धन्यवाद देते हैं। अगली पसंद में सुनवाता हूँ, यानी कि रविंदर जी की पसंद है, रविंदर जी अपनी धर्मपत्नी जी के लिए गाना सुनाना चाहते हैं। सुन साहिबा सुन, इंजॉय कीजिए।

वेलकम बैक। और मेरे पास बहुत सारे फीडबैक आ चुके हैं। रंजीत कुमार जी जुड़ चुके हैं, वेलकम है रंजीत कुमार जी आपका भी। और मंगेश देशमुख जी लिखते हैं, अमन सर जी रिक्वेस्ट किया गया, हाँ आपका रिक्वेस्ट शायद आया होगा मेरे ख्याल से, देखना पड़ेगा। और अरुण मंडल लिखते हैं कि ये राम तेरी गंगा मैली का गाना मुझे बहुत मस्त लगा है, थैंक यू सो मच। एंड नाहिद जी लिखते हैं कि वाह वंडरफुल फन माइट है, सुन सही बस सुन मजा आ गया सुन के। और बाबूलाल जी जिसे के सभी दोस्तों को धन्यवाद देते हैं हमारे गाने पर फीडबैक देने के लिए। ज्योति जी लिखते हैं कि सुपर लाजवाब पसंद के लिए थैंक यू। राधा कृष्ण को लिखते हैं कि बहुत ही लाजवाब पसंद है, धन्यवाद देते हैं। और हुकुम चंद जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारी फरमाइश है, थैंक यू सो मच। एंड रवि मार जी लिखते हैं कि सुन सही बस सुन बहुत ही लाजवाब बेहतरीन पसंद है। और आत्मराम जी लिखते हैं कि अमन सर जी इस गाने का क्या कहें, जितनी तारीफ करें कम है, सुनते रहिए रेडियो हॉट स्टार जो दीवाना बना दे, धन्यवाद देते हैं आपको भी। और अब अगला जो गाना है वो है एमडी अरशद जी का लागी छूटे ना अब तो सनम, सभी दोस्तों के लिए सुनवा दिया, एंजॉय कीजिए।

0: बिल्कुल लागे छूटे ना, अब तो सनम और फिल्में भी आ गया है बहुत सारे। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि सुपर फरमाइश, ये ऐसे ही लिखते हैं जैसे मुझे पढ़ना पड़ता है। और ये फिर में
1: जी नमस्कार, आरजे अमन सर। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि जब से ये रेडियो हॉट स्टार ये चालू हुआ है तब से मैं इसको मैं सुन रहा हूँ, और ये सुनने से हमें एक चीज कहीं इंजॉय होता है कि जो गाना हम इंटरनेट पर सर्च नहीं कर सकते, जो याद नहीं आता है, जितने भी सारे आपके ऑडियंस हैं उनके माध्यम से हमें अच्छे अच्छे सॉन्ग सुनने को मिलता है। थैंक यू।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, सभी दोस्त एक से बढ़कर एक चुन चुन के गाने लाते हैं, सभी का थैंक यू सो मच। ज्योति जी लिखते हैं कि वर्ल्ड इज गोल्ड, लाजवाब फरमाइश। एंड राजमल जी लिखते हैं कि ओल्ड इज गोल्ड, बहुत ही सुपर हिट गाना अमन जी सुनने को मिल रहा है। नाहिद जी लिखते हैं कि वाओ क्या पसंद है, सुपर ऑसम फरमाइश, थैंक यू सो मच, मुझे अच्छी लगी है। एंड हुकुम चंद जी लिखते हैं कि बहुत ही लाजवाब फरमाइश है, धन्यवाद देना चाहूंगा। एंड यहाँ पे सरोजीत जी लिखते हैं कि बहुत ही प्रोग्राम शानदार चल रहा है, थैंक यू सो मच। नंदनी मां लिखते हैं कि बहुत ही प्यारी फरमाइश है, बहुत ही प्यारा गाना है, धन्यवाद देते हैं दोस्त को। एंड राधाकृष्ण को लिखते हैं कि एक अमन जी आज तो एक से बढ़कर एक गाने बज रहे हैं। बिल्कुल आत्मराम जी लिखते हैं अमन सर जी लाजवाब प्रोग्राम चल रहा है, थैंक यू सो मच, आज तो हम खाना मतलब प्रोग्राम सुनने के बाद ही खाएंगे, अच्छा ये बात है। मीना जी लिखते हैं कि बहुत ही खूबसूरत फरमाइश है। इसी बात पर अगला जो मैं गाना प्ले करने वाला हूँ वो है सुनीता गोप जी का मैं दीवाना न जाने कब कैसे। अमन जी सबसे ये गाना सभी दोस्तों को डेडिकेट करना चाहती है, तो सुनवा दिया, इंजॉय कीजिए मैं दीवाना ये वाला गाना। ओ माय गॉड, ये गाना तो डाउनलोड ही नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, मैं फिलहाल एक गाना प्ले कर रहा हूँ तब तक।
2: फिल्मी गाने के नए वीडियोस को देख

और ये गाना सुनकर मुझे भी एक ये पांचों उंगलियों की कहानी आ गई है याद। एक बार क्या हुआ ना, यानी पांचों उंगलियों में झगड़ा हो गया है ना। एक ने कहा कि मैं बड़ा हूँ, एक ने कहा मैं बड़ा हूँ, एक ने कहा नहीं मैं बड़ा हूँ, एक ने कहा नहीं मैं बड़ा हूँ, एक ने कहा नहीं नहीं मैं बड़ा हूँ। तो सबसे पहले सबसे छोटी उंगली से पूछी गई कि भाई तुम बताओ कि तुम यानी कैसी बड़ी हो। तो इसने कहा कि देखिए कोई भी गिनती गिनते हैं ना, तो सबसे पहले एक दो तीन, चाहे जनवरी फरवरी मार्च, चाहे यानी संडे मंडे, जो भी यानी गिनती गिनने वाला काम होता है सबसे पहले मुझसे ही शुरू होती है। अगर यानी कि कोई यानी माला जपता है तो मुझसे ही शुरुआत करता है, इसलिए सबसे बड़ी मैं हूँ। फिर उसके बगल वाला से इन्हें पूछा गया, अच्छा भाई तुम बताओ तुम यानी कैसे बड़े हो। तो इसने कहा अरे मैं तो सबसे बड़ी हूँ, क्योंकि अगर कोई भी अंगूठी होता है वो कीमती से कीमती अंगूठी मैं पहनता हूँ, और उसके बाद से जो यानी के अगर यानी के किसी की होती है ना यानी के सगाई, तो सबसे पहले हमें ही इस अनामिका उंगली में ही मुझे अंगूठी पहनाते हैं, इसलिए मैं सबसे बड़ी हुई। अच्छा फिर अब यानी कि बीच वाले से यानी पूछा गया, अच्छा तुम बताओ कि तुम यानी कैसे बड़े हो। तो ये क्या अंधे हो, दिखाई नहीं दे रहा है मैं सबसे बड़ी हूँ। अच्छा जी ठीक है चलो मान लेते हैं। और उसके बाद उसके जो यानी बगल वाला है उससे भी पूछा गया कि अच्छा तुम बताओ तुम कैसे बड़ी हो। तो इसने कहा कि ये बताओ कि यानी कि तुम कैसे बड़े हो। तो इसने कहा कि अरे मैं सबसे बड़ी हूँ क्योंकि मैं भूलों को राही, मतलब भूले जो राही होते हैं उनको मैं रास्ता बताती हूँ। अगर कोई मुझसे आपसे पूछेगा कि हमें यहाँ जाना है, आप इसी उंगली का इशारा करते हो, आप ऐसे जाइए फिर ऐसे जाइए फिर, और मैं तुम्हें देख लूंगा या देख लूंगी। जैसे अगर किसी को धमकी देना है, मैं हर जगह काम आती हूँ, इसलिए मैं सबसे बड़ी मैं ही हूँ। तो अब पूछा गया अंगूठा से, अच्छा अंगूठा जी तुम बताओ तुम कैसे बड़े हो। सबसे बड़ा मैं ही हूँ, कोई भी जमीन लिखवाना हो, कोई भी कहीं यानी के मतलब अंगूठे का निशान दिए बिना कोई काम कर नहीं सकते हैं। आजकल भी अपना यानी फिंगरप्रिंट में अंगूठे का निशान बहुत कीमती होता है ना, इसलिए अंगूठा जी कहा कि मैं ही सबसे बड़ा हूँ। तो सबसे कहा गया कि भाई सुनो यानी पांचों उंगलियों की अलग अलग अहमियत है, अलग अलग सबकी यानी कीमत है, इसलिए तुम लोग आपस में झगड़ा मत करो क्योंकि तुम पांचों यानी बराबर हो। जब तुम पांचों यानी मिलते हो तो एक यानी मुक्का बनता है, एक मुट्ठी बनती है जो सबका सबका हावी हो जाती है और सबका मुंह तोड़ सकते हो। तो ये एक छोटी सी स्टोरी थी, इस गाने को सुनकर मुझे ये स्टोरी आ गई यार। फिलहाल मैं गाना प्ले कर रहा हूँ सुनीता गोप जी का, एंजॉय कीजिए सुनीता गोप जी।

0: वेलकम बैक और फीडबैक आ चुका है मेरे पास बहुत सारा। तो अरुण मन्ना जी लिखते हैं सुपर हिट पसंद है, थैंक यू सो मच। एंड राजमन जी लिखते हैं कि अर्जमन जी वो यानी पांच उंगली वाली कहानी सुपर हिट लगी है, अच्छा थैंक यू सो मच। आत्मराम जी लिखते हैं अमन सर जी आपकी स्टोरी मुझे बहुत अच्छी लगी, थैंक यू सो मच आपका भी। और ज्योति जी लिखते हैं कि ये सुनीता जी की पसंद मुझे ब्यूटीफुल लगी है। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि सुनीता गोप जी की पसंद बहुत बहुत बहुत बेहतरीन है। और ये फीडबैक सुन लेते हैं।
1: वाह क्या बात है अमन सर जी, आपने तो मजा ही डाल दिया कहानी सुनवा कर, ये पांच उंगली बात आ गया कहानी सुनने में
0: जी, धन्यवाद आपका भी। और जाकिर जी लिखते हैं कि पांच उंगलियों की वो कहानी बहुत अच्छी लगी है, थैंक यू सो मच अच्छी जानकारी देने के लिए, थैंक यू सो मच। वो तो अचानक से मुझे वो गाना सुन के आ गया यार। हुकुम चंद जी लिखते हैं कि आपके स्टोरी से जो सीख मुझे मिली है वो मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच उसके लिए। और राधा कृष्ण गोप लिखते हैं कि हमारे श्रीमती जी के पसंद मुझे बहुत ही लाजवाब लगा, धन्यवाद देते हैं। और बाबूलाल जी लिखते हैं कि पांच उंगलियों का अमन जी स्टोरी सुपर हिट लगी है, थैंक यू सो मच। एंड हम नंदनी माँ लिखते हैं कि ये सुनीता जी के पसंद और पांच उंगलियों की कहानी सुपर लगा, थैंक यू सो मच। मीना जी लिखते हैं कि बहुत खूबसूरत गाना है ये बिल्कुल। और सुनीता जी लिखते हैं कि अमन जी बहुत बहुत धन्यवाद मेरा गाना प्ले करने के लिए। अगली पसंद जो है वो मैं सुनवाने वाला हूँ वो है खुशबू कुमारी जी का। और खुशबू कुमारी जी सुनवाते हैं आपके पसंद का ये गाना, एंजॉय कीजिए, थैंक यू सो मच।

0: वेलकम बैक और बहुत सारे फीडबैक आ चुके हैं मेरे पास। और सबसे पहले तो यहाँ पे बाबूलाल जी लिखते हैं कि सुनीता गोप जी की पसंद मुझे बहुत ही पसंद आई है। एंड ज्योति जी लिखते हैं कि ये खुशबू जी की पसंद मुझे बहुत ही लाजवाब लगी है, थैंक यू खुशबू जी। मीना जी लिखते हैं कि मुझे ये गाना बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच खुशबू। एंड प्रमोद कुमार लिखते हैं कि खुशबू जी की पसंद बहुत ही लगी है। राधा कृष्ण गोप लिखते हैं कि लाजवाब एक नंबर गाना बहुत अच्छा लगा है। नाजिम जी लिखते हैं कि वंडरफुल फरमाइश है। और हुकुम चंद जी लिखते हैं कि ये खुशबू जी की फरमाइश मुझे बहुत ही प्यारी लगी है, थैंक यू सो मच। एंड अरुण मंडा जी लिखते हैं कि ये किशोर कुमार की आवाज़ में लाजवाब गाना सुनने को मिला है, मजा आ गया सुन के। और इसी बात पर अगला जो गाना मैं प्ले करने वाला हूँ दिगंबर जी का, दिगंबर जी क्या कहते हैं सुनवाता हूँ मैं।
1: हेलो अमन सर जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, शुभ संध्या।
0: अब तो इवनिंग हो गया है।
1: ओल्ड इज गोल्ड में एक सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं, तो ये सॉन्ग सबसे पहले आपको,
0: थैंक यू,
1: और आपकी सुंदरता के लिए फिर हमारे सभी दोस्तों को और भाइयों को, सर्वेश भगत जी, प्रमोद जी, नंदनाम जी और सभी दोस्तों को ये सॉन्ग डेडिकेट है। तो मूवी का नाम है लहू के दो रंग।
0: अच्छा।
1: और सॉन्ग के बोल हैं, सॉन्ग के बोल हैं,
0: बोलिए,
1: सॉन्ग के कुछ बोल हैं, चाहिए थोड़ा प्यार, थोड़ा प्यार चाहिए, जाने मन थोड़ा प्यार चाहिए। तो ये सॉन्ग है सभी दोस्तों को, और ये आवाज है इसमें किशोर कुमार की, और संगीत दिया है इसमें बप्पी लहरी का। तो ये सॉन्ग सबको सुनवा दीजिएगा, धन्यवाद अमन सर।
0: ओके, इंजॉय कीजिए, चाहिए थोड़ा प्यार चाहिए ये गाना।

और यहाँ पे प्रमोद कुमार लिखते हैं कि दिगंबर जी की पसंद मुझे बहुत अच्छी लगी है और गाने में शामिल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। नाही जी लिखते हैं कि सुपरहिट पसंद है दिगंबर जी का, थैंक यू सो मच। एंड ज्योति जी लिखते हैं कि लाजवाब पसंद चल रहा है, थैंक यू सो मच। एंड बाबूलाल जी लिखते हैं कि दिगंबर जी की पसंद सुपर सुपर सुपर डुपर हिट लगी है। नाजिम जी लिखते हैं कि ऑसम फरमाइश है। और हुकुम चंद जी लिखते हैं कि बहुत ही लाजवाब फरमाइश चल रहा है। अमन सर जी, आत्माराम जी लिखते हैं कि अमन सर जी दिगंबर भाई की पसंद नंबर 1 रहती है। और ये फीडबैक सुन लेते हैं।

0: चाहिए थोड़ा प्यार चाहिए। अमन सर सुपर सॉन्ग चल रहा है
1: जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल सुपर पसंद है। और इसी बात पर अगला जो पसंद है वो यानी कि प्रमोद कुमार जी का। प्रमोद कुमार लिखते हैं कि अमन सर जी को प्यार भरा नमस्कार है, मुझे आज एक गाना सुना है जिसका लिंक मैंने भेज दिया है सबसे पहले आपको और उनके पास से जितने भी रेडियो हॉटस्टार के दोस्त हैं जो दीवाने दीवानियां हैं, सभी दीवाने दीवानियों के लिए मेरा गाना डेडिकेट है। सुनवा दिया, एंजॉय कीजिए भाई प्रमोद कुमार जी।

0: और प्रमोद जी आप बनते हैं आज के सॉन्ग विनर, क्योंकि आप बहुत ही प्यारा गाना सुनकर मतलब इन्हें सोच कर ढूंढ कर लाए हुए हैं। बहुत बहुत बधाई हो आपको। और कोई गाना लिख कर मुझे भेज सकते हैं। और एक हमारे शाहिद जी आते हैं, वो आज तो गायब है बिल्कुल, क्योंकि वो भी गाना बहुत अच्छा लेके आते हैं, अनसुने सुने गाने लेके आते हैं वो। फिर देख मेरे पास बहुत सारा आया हुआ है, शामिल करता हूँ पहले।
1: हाँ जी अमन सर, इस गाने के लिए एक जबरदस्त मेरे पास फीडबैक है।
0: हाँ हाँ बोलिए।
1: मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने कभी भी किसी से प्यार किया था। हाँ। मैंने भी किसी से कभी प्यार किया था लेकिन मेरा किस्मत खराब था कि मेरा प्यार कोई और लेके चला गया। मेरा प्यार बेवफा निकला।
0: ओ माय गॉड। तो मैं तो आपके लिए यही कहूँगा कि आप ऐसे कहिए ना कि मैंने किसी से प्यार किया था, थोड़ा नहीं बेशुमार किया था, है कि नहीं। और जब मैंने उससे कहा तो उसने कहा अरे यार मैंने तो मजाक किया था, है कि नहीं। ऐसा नहीं ना हुआ आपके साथ, जरा बताइएगा मुझे जरूर। और यहाँ पे यानी कि प्रकाश कुमार लिखते हैं कि ये नितिन मुकेश की आवाज में सुपर सॉन्ग लगा मुझे बिल्कुल। और नाहिद जी लिखते हैं कि वाह ब्यूटीफुल फरमाइश है भाई प्रमोद जी, थैंक यू सो मच इस गाने के लिए। ज्योति जी लिखते हैं कि भाई साहब की पसंद मुझे बहुत ब्यूटीफुल लगी है। और बाबूलाल जी लिखते हैं कि भाई प्रमोद जी की पसंद लाजवाब लाजवाब लाजवाब। एंड दिगंबर जी क्या कहते हैं सुनते हैं।
2: हेलो अमन सर जी, कैसा सॉन्ग लगा सुनकर, मुझे तो आनंद ही आ गया।
0: अच्छा।
2: और आपने जो हमारा सॉन्ग प्ले किया बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी दोस्तों ने भाइयों ने जो फीडबैक दिए उनके लिए धन्यवाद।
0: धन्यवाद आपका भी। और दत्ता कर्म लिखते हैं कि प्रमोद जी का गाना मुझे बहुत अच्छा लगा है, धन्यवाद देते हैं उनको। और मीना जी लिखते हैं कि वाह वाह वाह क्या गाना है, मुझे बहुत अच्छा लगा है। राधाकृष्ण को लिखते हैं कि बेहतरीन गाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं उनको। एंड प्रमोद जी लिखते हैं थैंक यू सो मच अमन सर जी मेरा गाना प्ले करने के लिए। इसी बात पे अगला जो गाना मैं प्ले करने वाला हूँ ज्योति खटवटे जी का प्ले करने वाला हूँ। ज्योति खटवटे जी क्या कहना चाहती हैं, इनका मैसेज मुझे ढूंढना पड़ेगा। ज्योति जी, हाँ ज्योति जी लिखती हैं, अमन जी नमस्ते, आज ओल्ड इज गोल्ड स्पेशल में मैं एक गाना सुनना चाहती हूँ। और जीवन के हर एक मोड़ पे, फिल्म का नाम है झूठा कहीं का। और ये गाना अमन जी सबसे पहले आपको और आरजे वंशिका जी को, उनके बेस्ट फ्रेंड जी को और इनके परमार जी को और कमलेश बहन जी को, अरुणा जी को, संगीता जी को, मनीषा जी को और सभी सुनने वाले दोस्तों को डेडिकेट करना चाहती हूँ। ओके, तो जीवन के मोड़ पे वाला गाना सुनना चाहती है ना, तो सुनवाता हूँ आपके, इंजॉय कीजिए इस गाने को।

बहुत सारे फीडबैक मेरे पास आ चुके हैं। सबसे पहले नाहिर जी लिखते हैं थैंक यू सो मच ज्योति खड़वड़े जी, इतना खूबसूरत फरमाइश में शामिल किया आपने। एंड और प्रमोद जी लिखते हैं ज्योति जी की पसंद मुझे औसम लगा है, धन्यवाद देते हैं। ज्योति जी लिखते हैं थैंक यू अमन जी मेरा गाना प्ले करने के लिए। और अमीना खान जी लिखते हैं अमन जी जी आपने मेरा गाना कुछ शामिल किया, थैंक यू सो मच। और अब हम भी शामिल हो गए हैं ओल्ड इज गोल्ड सुनने, जी जी बिल्कुल वेलकम है आपका भी। राधा कृष्ण को लिखते हैं कि बहुत ही खूबसूरत गाना है, धन्यवाद देते हैं। और दाता क्रम लिखते हैं कि ज्योति खड़वड़े जी की पसंद मुझे बहुत ही पसंद आई है। एंड यहाँ पे जुड़ चुके हैं नाम है विजय राज जी, बहुत बहुत वेलकम है। लिखते हैं कि आर्जमन जी आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार, आपकी आवाज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है, थैंक यू सो मच। एंड जब आप गुनगुनाते हैं तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इसी बात पे अगला जो गाना मैं प्ले करने वाला हूँ मीना इब्राहिम जी के प्ले करने वाला हूँ। मीना जी लिखती हैं कि अस्सलाम वालेकुम अमन जी, आप कैसे हैं, मैं बहुत अच्छा हूँ, सभी दोस्तों को गुड इवनिंग, मैं मीना इब्राहिम USA से। एंड आज मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, सबसे पहले आपको और जितने भी सुनने वाले दोस्त हैं वो सभी दोस्तों को गाना डेडिकेट करना, और स्पेशली डेडिकेट मेरी महबूबा सिस्टर जी को है, क्योंकि इस गाने से मेरे बचपन की यादें जुड़ी हुई हैं। तो सुनवा दिया, इंजॉय कीजिए आपके लिए और महबूबा जी के लिए ये गाना।

वेलकम बैक। और नंदनी मालिक जी की ज्योति जी का गाना मुझे बहुत ही प्यारा लगा है और ये भी गाना बहुत अच्छा लगा है। थैंक यू सो मच। एंड ज्योति जी लिखते हैं कि यहाँ पे मीना जी की पसंद मुझे बहुत ही पसंद लगी। थैंक यू सो मच मीना जी। एंड नाही जी लिखते हैं कि मीना जी की पसंद मुझे बहुत ही बेहतरीन लगी। थैंक यू सो मच मीना जी। मीना जी लिखते हैं कि मेरा रिक्वेस्ट को प्ले करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी बहन यानी महबूबा जी भी आई हुई है, बहुत बहुत वेलकम है महबूबा जी। लिखते हैं कि थैंक यू फॉर दिस सॉन्ग, ये तो मेरे इन्हीं के बचपन की यादों को ताजा कर दिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच मीना माई सिस्टर। एंड ओके। और उनके पास है यहाँ पे विजय राज लिखते हैं सर। ओके, तो उसको आप अपना वहां पे सॉन्ग रिक्वेस्ट में भेज दीजिए। आपके लिए लिखा है ना सॉन्ग रिक्वेस्ट, जैसे मैं बता दूं कि ये कहाँ मिलेगा, दो जगह मिलेगा। आप यानी एप्लीकेशन में अपने जो जितने भी यानी के कंटेंट है सबको ऊपर बढ़ाइएगा, ऊपर बढ़ेगा तो वहां पे मिलेगा सॉन्ग रिक्वेस्ट। या इन मोर बटन लिखा होगा, मोर बटन पर क्लिक कीजिएगा, मोर बटन में लिखा होगा सबसे पहला ऑप्शन होगा सॉन्ग रिक्वेस्ट, वहां से भेज सकते हैं। नाजिम जी लिखते हैं सुपर हिट पसंद है मीना जी आपकी। राधा कृष्ण गोप लिखते हैं कि बहुत ही शानदार पसंद है, धन्यवाद देते हैं इस गाने के लिए। और जैसे कि अब मैं अगला जो गाना मैं प्ले करने वाला हूँ वो गाना है ये सरिता सिन्हा जी का, और सरिता सिन्हा जी सभी दोस्तों को डेडिकेट करना चाहती हैं। तो सरिता सिन्हा जी आपके गाने को प्ले कर दिया मैंने।

और बहुत से फीडबैक मेरे पास आ चुके हैं, शामिल करता हूँ मैं। नाही जी देते हैं, थैंक यू सो मच मेरा गाना प्ले करने के लिए। और उनके बाद राधा कृष्ण को लिखते हैं कि शानदार पसंद है, थैंक यू सो मच। एंड अमीना जी लिखते हैं कि वाह क्या बात है, क्या पसंद है, थैंक यू सो मच। एंड ज्योति जी लिखते हैं कि ये नाही जी की पसंद मुझे बहुत ही पसंद आई है। और नंदनी मां लिखते हैं कि बहुत ही बढ़िया गाना है, बहुत ही प्यारा गाना है। और हुकुम चंद जी लिखते हैं कि अमर सा जी बहुत ही प्यारी फरमाइश है। और इसी बात पर अगला जो गाना है वो मैं प्ले करने वाला हूँ, वो राधा कृष्ण गोप जी का। राधा कृष्ण गोप जी, आपने मेरी पसंद का गाना लेके आए हुए हैं, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और सुनवाता हूँ आपके पसंद का ये गाना, तो इंजॉय कीजिए राधा कृष्णा गोप जी, जो मुझे बहुत पसंद है ये गाना। थैंक यू सो मच इस गाने के लिए आपने फरमाइश किया है, क्योंकि मेरा प्यार वो है कि मर के भी दिल से जुदा अपने बाहों से होने ना देगा। इंजॉय कीजिए।

0: वेलकम बैक। और मेरे पास बहुत सारे फीडबैक आ चुके हैं, तो शामिल करता हूँ मैं। और प्रमोद, और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि वाह, नाही जी की भी पसंद बहुत अच्छी लगी, और राधा कृष्ण गोप जी की, ज्योति जी लिखते हैं कि ये भाई साहब की पसंद मुझे बहुत ही पसंद आई, थैंक यू सो मच। एंड नाही जी लिखते हैं वाह क्या बात है, ब्यूटीफुल फरमाइश के लिए राधा कृष्ण गोप जी, थैंक यू सो मच। एंड मीना जी लिखते हैं वाह बहुत ही शानदार फरमाइश है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये फीडबैक
1: क्या खूबसूरत सॉन्ग चल रहा है अमन सर जी, सुनकर आनंद आ रहा है, हमारे दोस्त की फरमाइश एकदम लाजवाब।
0: धन्यवाद आपका भी। और उनके बाद है यहाँ पे राधा कृष्ण गोप लिखते हैं कि अमन जी गाना बजाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड जाकर जी लिखते हैं कि राधा कृष्ण गोप जी की सुपर चॉइस है, मेरा प्यार वो है कि मर के भी तुमसे जुदा अपनी बाहों से होने ना दोएगा, बिल्कुल ओल्ड इज गोल्ड, सुपर फरमाइश। नंदनी मां लिखते हैं कि ये सच में बहुत ही प्यारा गाना है, बहुत ही बढ़िया गाना है। और अमीना खान जी लिखते हैं कि अनमोल सॉन्ग है, अनमोल पसंद है, बहुत ही प्यारा प्रोग्राम भी लग रहा है, थैंक यू सो मच। और ओल्ड इज गोल्ड, ओल्ड इज गोल्ड, बिल्कुल जी बिल्कुल। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि भाई राधा कृष्ण गोप जी ऑसम फरमाइश लगी है आपकी। और पीकू राय जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है आपका भी। अगला जो गाना है दो दोस्तों की पसंद है, एक है उनका नाम मैं बता देना चाहता हूँ, हमारे सर्वजीत सेठी जी हैं, सर्वजीत सेठी जी के साथ साथ हैं इसी गाने में एक साहब और हैं, उनका नाम भी मैं बता देता हूँ, उनका नाम है ये अमित गुरोवर, अमित गुरोवर, इन दोनों दोस्तों की एक ही पसंद है। और वो गाना है किस्मत में लिखी कोई, जो मुझे बहुत पसंद है, जो मैंने कल प्ले किया था।

0: हो तुम।
1: और बहुत सारे फीडबैक आ चुके मेरे पास, तो हुकुम चंद जी लिखते हैं कि दोनों फरमाइशें, दोनों दोस्तों की फरमाइशें बहुत अच्छी लगी है, थैंक यू सो मच। ज्योति जी लिखते हैं कि बहुत ही बहुत ही बहुत ही सुपर हिट लाजवाब फरमाइश, थैंक यू सो मच। एंड जाकिर जी लिखते हैं सुपर से भी ऊपर वाला चॉइस, ये किस्मत की लिखी कोई बात हो तुम, वेरी नाइस सॉन्ग है, दोनों दोस्तों को धन्यवाद देना चाहूंगा। मीना जी लिखते हैं वाओ सुपर फरमाइश के लिए थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। नाजिम जी लिखते हैं दोनों दोस्तों के पसंद सुपर हिट लगा है, लाजवाब लाजवाब लाजवाब, धन्यवाद देते हैं दोनों दोस्तों को। और बाबूलाल जी लिखते हैं कि दोनों दोस्तों के पसंद बहुत ही पसंद आई है, धन्यवाद देते हैं। और पीकूराज जी लिखते हैं कि ओके ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। अमीना खान जी लिखते हैं कि अर्जमन जी ये सॉन्ग बहुत ही बेहतरीन है, और थैंक यू सो मच। और राधा कृष्ण गोप जी लिखते हैं कि शानदार पसंद के लिए धन्यवाद देते हैं। और नंदनी मां लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना है जी, वो मुझे पता है आपको भी पसंद है, मुझे भी पसंद है, हमारे यानी कि पापा जी को भी पसंद है, सबको पसंद है। और नाहिद जी लिखते हैं कि ब्यूटीफुल फरमाइश चल रही है। अब इसी बात पर अगली जो फरमाइश है वो मैं सुनवाता हूँ आपको, नाम है पूजा भास्कर जी, तो सुनवा दिया पूजा भास्कर जी, इंजॉय कीजिए लोग कहते हैं।

0: आप सा कोई नहीं जी लिखते हैं सुपर ऑसम फरमाइश है ये पूजा भास्कर जी आपका, और हुकुम चंद जी लिखते हैं कि बहुत ही बेहतरीन फरमाइश है ये, और अपिकुरा जी लिखते हैं कि आज के दिन यानी कि पूरा दिन अच्छे सॉन्ग का इनके फरमाइश हो रहा है दोस्तों का अपना FM हॉट स्टार नंबर 1, थैंक यू सो मच। और राधा कृष्ण गोप जी लिखते हैं कि लाजवाब पसंद है, धन्यवाद देते हैं इस गाने के लिए भी। और मीना जी लिखते हैं बहुत ही खूबसूरत फरमाइश है, मोहम्मद अजीज की ये आवाज बहुत ही खूबसूरत है। राधा और यहाँ पे बाबूलाल जी लिखते हैं कि आपके जैसा कोई नहीं, सुपर हिट गाना लगा है, और ये फीडबैक सुन लेते हैं।
1: धन्यवाद अमन सर जी, आपने हमारा गीत चलाया और जिन्होंने हमारे गाने पर फीडबैक दिया उनका भी दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। कार्यक्रम बहुत ही शानदार चल रहा है और सभी गीत सुपर हिट चल रहे हैं, तो सुनते रहे रेडियो होस्टर जो सबको दीवाना बना दे। मैं सरोजीत सेठी फाजिलका पंजाब से,
0: धन्यवाद है आपका भी। और इसी बात पर अगला जो गाना मैं प्ले करने वाला हूँ MD फैज जी, क्योंकि ये भी ये यानी कि उनकी तारीफ में वो गाना है, तो और यानी कि तारीफ वाला गाना हो और ये गाना प्ले ना हो तो हो ही नहीं सकता। इसके बाद कि तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती नजारे हम क्या देखे, शायद वो भी गाना बहुत ही अच्छा है। एक मिनट जरा देखते हैं, वो तेरे चेहरे में वो जादू है।

0: दान ये
1: है है है है।
0: उम्रे शबाब।
1: वाह वाह वाह।
0: अरे कुछ बुजुर्गों का भी कहना मानिए।
1: मान लीजिए
0: हाँ, क्या तकल्लुफ है वल्ला।
1: वाह वाह।

0: वेलकम बैक और फीडबैक आ चुके हैं, सुनवाते हैं।
1: सुपर सुपर एकदम झकास सॉन्ग नंबर वन की पोजीशन का सुनकर आनंद ही आ गया।
0: धन्यवाद
1: की फरमाश एकदम नंबर वन।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और बाबूलाल जी लिखते कि यानी पूजा भाट का जो गाना मुझे बहुत अच्छा लगा है। तो मीना जी लिखते वाह बहुत खूबसूरत गाना है ये भी। और नाजिम जी लिखते सुपर डुपर हिट सॉन्ग है। और यहाँ पे यानी कि पीपुराज जी लिखते हैं कि ये वाला गाना भी मस्त लगा है। धन्यवाद एमडी फैज जी। आसपराम जी लिखते हैं कि अमन सर जी बहुत ही सुंदर गाना लगा है, धन्यवाद। एंड अमीना खान जी लिखते हैं कि वाह बहुत ही खूबसूरत, क्या बात है क्या बात है, बहुत खूब बेहतरीन बेहतरीन ये नजराना सुनने को मिला। इसी बात पर अगला गाना यानी पीकुराय जी का, तेरे चेहरे में वो जादू है बिन डोर खींचा जाता हूँ।

वेलकम बैक। और फीडबैक मेरे पास आ चुके हैं। जाकिर जी लिखते हैं कि फिल्म यानी कि जेल जो यात्रा का शानदार गाना सुनने को मिला है, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच एमडी फैज जी को। और बाबूलाल जी लिखते हैं कि अमन सर जी, बहुत ही अच्छा और लाजवाब गाना सुनने को मिला है। ओके जी। और पीकू राय लिखते हैं कि थैंक यू सो मच अमन जी मेरा गाना प्ले करने के लिए। और हुकुम चंद जी लिखते हैं कि लाजवाब फरमाइश चल रहा है, थैंक यू सो मच। एंड मंगेश देशमुख जी लिखते हैं कि सभी दोस्तों की फरमाइश शानदार लग रहा है। राजेंद्र जी लिखते हैं कि ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर सुपरहिट पसंद के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा मैं। अरुण मन्ना जी लिखते हैं अमन जी नमस्कार, और हमारे यहाँ राजकोट में नेट सही नहीं चल रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, मुझे पता है, बहुत जगह नेट का प्रॉब्लम है। मीना जी लिखते हैं वाह वाह वाह, बहुत ही शानदार गाने के लिए धन्यवाद देते हैं। राधा कृष्ण गोप जी लिखते हैं सुपर हिट फरमाइश, बहुत बहुत शुक्रिया इस गाने के लिए भी। एंड ज्योति जी लिखते हैं कि वेरी वेरी वेरी ब्यूटीफुल पसंद है। और बाबूलाल जी लिखते हैं कि तेरे चेहरे में वो जादू है गाना अच्छा लगा है। अगली पसंद दत्ता करम जी की, ये रेशमी जुल्फें ये शरबती आंखें, इन्हें देखकर जी रहे हैं।

और इसके बाद से मेरे पास फीडबैक आए हुए हैं। नाही जी लिखते हैं कि सुपर हिट अमेजिंग पसंद है दत्ता करम जी का, और पीकू राय लिखते हैं कि ये दत्ता जी का पसंद का गाना मुझे A1 लगा है, धन्यवाद देते हैं। और उनके बाद यहाँ पे हुकुमचंद जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारी फरमाइश लगी है, और राधा कृष्ण गोप लिखते हैं कि इस गाने के लिए धन्यवाद देते हैं, मजा आ गया गाना सुन के। और जागीर खान लिखते हैं कि दत्ता करम जी की चॉइस सुपर डुपर हिट लगी है, और नंदनी मां लिखते हैं कि बहुत ही सुपर हिट पसंद है। और इसी बात पर अगला जो गाना है वो आरजे सोनी जी सुनना चाहती हैं। आज उन्होंने भी बहुत ही प्यारे गाने की फरमाइश किया है उन्होंने, ये तो सुनवाता हूँ उनकी उनकी पसंद का ये गाना, और ये गाना मैं पहली बार सुनने वाला हूँ जगदीश सिंह की आवाज में। सुनवाता हूँ, इंजॉय कीजिए आरजे सोनी जी।

और आरजे सोनी जी, आप भी बनती आज के सॉन्ग विनर। एक और गाना सुन सकती हैं आप, क्योंकि आपका गाना बहुत ही प्यारा है, दिल को छूने वाला। और ये गाना मैं पहली बार सुन रहा हूँ।

0: वाओ, अमीना खान जी लेते हैं, वाह क्या बात है। मौसम तो बिल्कुल यानी कि कातिलाना हो गया और आपका अंदाज आशिकाना हो गया, प्रोग्राम तो बेमिसाल हो गया। थैंक यू सो मच। एंड यहाँ पे प्रमोद कुमार जी लेते हैं कि ये यहाँ पे दत्तकरण की और आरजे सोनी जी की पसंद बहुत ही औसम लगा है। थैंक यू सो मच आरजे सोनी जी। और यानी कि यहाँ पे पीकू राय जी लिखते हैं कि आरजे सोनी जी का पसंद मुझे बहुत अच्छा लगा है। थैंक यू सो मच इतना सुपर डुपर हिट गाना सुनवाने के लिए। और मीना जी लिखते हैं कि वाह ये बहुत ही शानदार गाना लगा है, थैंक यू सो मच। और आत्मराम जी लिखते हैं कि ये गजल अप्रतिम लगा है, दिल खुश करने के लिए धन्यवाद देते हैं आरजे सोनी जी को। राधा कृष्ण गोप लिखते हैं कि बहुत ही खूबसूरत नगमा है, दिल खुश हो गया, धन्यवाद देते हैं आरजे सोनी जी को। नंदनी माँ लिखती है कि वाह बहुत ही प्यारी पसंद है आरजे सोनी जी, थैंक यू सो मच आपका, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आपको। और ज्योति खड़वाड़े जी लिखते हैं कि आरजे सोनी जी की पसंद ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। एंड यहाँ पे बाबूलाल अंजाना जी लिखते हैं कि आरजे सोनी जी की पसंद बहुत ही प्यारी लगी है। और ये फीडबैक सुन लेते हैं।
1: सर जी ये गाने का बोल तो बहुत अच्छा था, ये गाना सुनने के बाद तो हमें नींद ही आने लगा। ये गाने का बोल क्या है, मैं ध्यान नहीं दिया, मैं खो गया इस गाने में।
0: बिल्कुल इस गाना था ही ऐसा कि भाई इसमें कोई भी खो जाएगा, एकदम बहुत ही प्यारा गाना था, मुझे बहुत अच्छा लगा है। और इसी बात पे अगला जो यानी कि पसंद है वो मैं सुनाना चाहता हूँ, शाहिद अंसारी जी की पसंद है। शाहिद अंसारी जी ने गाना चुनकर लाया है, बहुत ही प्यारा गाना है, सुनवाते हैं उनकी पसंद का ये गाना।

और मैं ज्यादा यानी कि सैड गाने नहीं सुनता हूँ क्योंकि मुझे सैड गाने उतने ज्यादा यानी पसंद नहीं होते हैं, लेकिन कोई कोई गाना मैं सुन लेता हूँ जो मुझे अच्छा लगता है। ज्योति जी लिखते हैं वेरी नाइस पसंद है, और अप्पी कुराज जी लिखते हैं भाई साईं जी के पसंद, ये सैड सॉन्ग सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। और इसीलिए मैं अगला जो गाना प्ले करने वाला हूँ और वो गाना जो आज के यानी विनर बने थे यानी सॉन्ग विनर हमारे यानी के प्रमोद कुमार जी, मैं उनके गाने को प्ले करने जा रहा हूँ। तो एंजॉय कीजिए भाई प्रमोद जी, आपके लिए

ओके और इसी बात पर अगला जो गाना मैं प्ले करने वाला हूँ थोड़ा सा मैं फीडबैक इसको मैं बाद में शामिल करूंगा। अगला जो गाना है वो गाना है इन मंगेश देशमुख जी और मोहन निवारे जी और राजमल हिवराले जी, ये सभी की पसंद का गाना है। इंजॉय कीजिए वो तुमसे मिलकर ना जाने क्यों और भी कुछ।

0: वेलकम बैक। और इसी बात पर अगला जो मैं फरमाइश लेने वाला हूँ वो है, यानी कि मेरे दोस्त वो लतीफ जी का लेने वाला हूँ, और वो गाना है कि तेरे बिना जिंदगी से शिकवा तो नहीं, बिल्कुल नहीं है। इंजॉय कीजिए, गाना प्ले कर दिया।
1: एक काम

ओ माय गॉड, बहुत सारे फीडबैक आए हुए हैं, थोड़ा सा फीडबैक पर विराम दिए हुए हम, और लेकिन मैं क्या करूं, थोड़ा सा आप समझिए, मैं आप सभी के गाने को मैं प्ले करने वाला हूं, लेकिन अगला जो गाना है वो आशाओं के सावन में हमें सुनवाने वाले हैं जाकिर खान जी, सुनवा दिया, इंजॉय कीजिए।

वेलकम बैक। और इसी बात पर अगला जो गाना मैं प्ले करने वाला हूँ वो प्ले करने वाला हूँ हमारे ये सुभाष जी का, सुभाष सिंह तिवारी जी का। वो सुनना चाहते हैं परदेश जाके परदेशिया। सुनवा दिया भाई सुभाष जी, एंजॉय कीजिए।

और अगला जो गाना है वो आरजे सोनी जीवा जो आज के इन विनर बनी हुए हैं उनका गाना मैं प्ले करने जा रहा हूँ, और वो गाना उनकी इन मम्मी जी के पसंद का गाना है, तो सुनवा दिया, इंजॉय कीजिए।

और वैसे तो बहुत सारे फीडबैक आए हुए हैं और यानी कि पड़े हुए हैं, लेकिन लेकिन आप लोग यानी कि फीडबैक ये नहीं देते रहिए, क्योंकि अगर आप फीडबैक देंगे तो आपका नंबर यानी कि टॉप 10 में आएगा। और उसके बाद फिलहाल मैं अगला गाना मैं प्ले कर रहा हूँ आरजे वंशिका जी का पसंद का। आरजे वंशिका जी, गाना प्ले कर दिया आपका, इंजॉय कीजिए।

0: ओके, और इसी बात पगला जो गाना मैं प्ले करने वाला हूँ अरुण मंडल जी का, बोलिए जी।
1: आरजे अमन सर नमस्कार।
0: नमस्कार,
1: आज मुझे एक गाना सुनना है, फिल्म का नाम है आसपास और गाने का बोल है मैं हूँ फूल वाली फूल बेचती हूँ।
0: अच्छा जी,
1: और ये गाना डेडिकेट है अमन सर आपको, आरजे बंसिका मैडम को,
0: थैंक यू,
1: और आरजे परमार सर को, और सुनील कुमार जी को, और रेडियो हॉट स्टार ऑनलाइन सुनने वाले सभी दोस्तों को।
0: ओके, पूजा कीजिए।

और आज के जो यानी कि टॉप जो टॉप 10 यानी कि लीडर बोर्ड में शामिल हैं उनमें से मैं किसी एक का यानी कि लॉटरी निकालता हूँ, देखते हैं किनका नाम आता है मेरे पास।

0: हर अंग सजाया है, घनघोर घटाओं को
1: बाबा
0: जुल्फों में बसाया है, बिजली के तबस्सुम को नजरों में भुलाया
1: है। सही बात है।

0: क्या बात है अकबर खान जी, मजा आ गया भाई आपके गाने में, बहुत ही बेहतरीन लाजवाब सॉन्ग, मजा आ गया।
1: धन्यवाद आपका भी, और इसी बात पर इनका भी मैं फीडबैक प्ले करता हूँ, क्योंकि मुझे भेजे थे सुनील कुमार जी ने।
2: अमन भैया नमस्कार, मैं सुनील कुमार बांका बिहार से, और ये जो गाना चल रहा अरुण मंडल जी की, और उन्होंने अपने गाने में हमें शामिल किया है, उनको दिल से धन्यवाद। मैं हूँ फूलवाली, मैं फूल बेचती हूँ, उनको तहे दिल से शुक्रिया।
1: जी धन्यवाद आपका, और मैं बता दूं कि बहुत से दोस्तों का फीडबैक है, मैं चूंकि यानी कि समय के अभाव में शामिल नहीं कर पा रहा हूँ, इसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, लेकिन अगला मैं

0: सभी गाने सुन रहा हूँ सर जी, मैं 7:30 बजे से जुड़ा हूँ लेकिन फीडबैक नहीं दे पाया, और बीच में अभी दिया भी तो आप बोल रहे हैं कि बस गाने चल रहे हैं दोस्तों के, यही बहुत अच्छी बात है, फीडबैक ना भी शामिल हो लेकिन मजा आ जा रहा है, पूरे गाने एक से बढ़कर एक चल रहे हैं।
1: जी सर, तो जी सर जी, मैं क्या करूँ, मतलब यानी कि कभी कभी ऐसी यानी कि मजबूरी आ जाती है कि मुझे ये कदम भी उठाना पड़ता है, क्योंकि अगर मैं सभी की फरमाइश को पूरा करूं तो 2 बजे रात हो जाएंगे लेकिन गाने खत्म नहीं होंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा फरमाइशें आती है हमेशा की तरह। लेकिन आप सभी का यानी कि प्यार है, थैंक यू सो मच, आप सभी इतने अच्छे अच्छे गाने की फरमाइश करते हैं। अगला गाना मैं जल्दी से प्ले करूंगा, और वैसे आखिरी गाना मैं प्ले करूंगा हुकुम चंद जी का, क्योंकि हम दोनों दो प्रेमी दुनिया छोड़ चले, वो तो मैं यानी लास्ट में प्ले करके जाऊंगा। लेकिन अगला जो गाना मैं प्ले करने वाला हूँ वो प्यार करने वाले कभी डरते नहीं, जो डरते हैं वो प्यार करते नहीं, राकेश परमंडा जी की पसंद है, इंजॉय कीजिए।

0: ओके, और एक फीडबैक आ चुका है, ये शामिल कर लेता हूँ।
1: आरजे अमन सर जी,
0: जी जी,
1: अब तक चले फरमाइश में सभी दोस्तों ने एक से बढ़कर एक गीत फरमाइश में भेजे हैं सर, और अब तक सभी कार्यक्रम मतलब कि पूरा कार्यक्रम एकदम सुपर और सुपर से ऊपर हुआ है, और आपकी प्रस्तुति काबिले तारीफ रही सर। आज के बेस्ट सॉन्ग विनर करता हमारी आरजे सोनिका जी, इनके
0: मम्मी
1: की फरमाइश का पसंद का गीत सर हमें बहुत अच्छा लगा, और आज का कार्यक्रम बिल्कुल लल्लनटाप रहा, और सभी दोस्तों को मैं शुक्रिया बोलना चाहूँगा हॉटस्टार से जुड़ने के लिए जो सबको दीवाना बना रहा है। अमन सर जी, आपकी प्रस्तुति काबिले तारीफ, मजा आ गया आज का कार्यक्रम एकदम लल्लनटाप और रेडबुल रहा सर।
0: अच्छा,
1: मैं फुले भक्त संजू भाऊ, धन्यवाद।
0: तो भाई यानी कि फुले भक्त संजू भाऊ जी वो आरजे सोनिका नहीं थी, आरजे सोनी जी थी। ओके, तो उनका नाम आप वहाँ ठीक कर लीजिएगा प्लीज अपने अपने रिपोर्टिंग में। और आखिरी गाना जैसे कि मैंने कहा था कि हुकुम चंद जी का मैं गाना प्ले करने वाला हूँ, तो हुकुम चंद जी का गाना मैं प्ले कर रहा हूँ, और इसी गाने के साथ मैं आप सबसे लूंगा प्रोग्राम से निकलने की इजाजत। मिलूंगा फिर कल यानी कि 90s एंड न्यू स्पेशल में, तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट, शब खैर, बाय बाय।

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 12 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 12 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 1 बज रहा है। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 1 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

बोलो साथ में अपनी भी नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं घरवाली की जय।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 2 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 2 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 3 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 3 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

चलो ले जा चल्ला निशानी, आ मेरी रानी ले जा चल्ला निशानी, मेरी मोहब्बत।

जरूर। आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 4 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 4 a.m. in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.